0: ना कोई मरा
1: मैं कवरा इच्छते ही हूँ
0: आता हुआ ना तीने वो या तने
1: मैं कहा रा तो ता तो चुकू
0: क्या हो रहा माय डार्लिंग।